सोई जन जान हर गुण सदगी आख वखाण जिन घर सेवया तिन सु पाया सहजेगी घर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होय तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेख जाने सोय जन नानक गुरमुख प्रगट होय।

प्रवरया कट अंतर मुख बोलो गुर अमृत बयना रहाओ। मैं मंथन प्रेम महाबैराग सगुर पुख पाया वड़ पाग दूजे पाए पवे बिकुमाया पाग ही नहीं सदगुर पाया अमृत हर रस हरिया पियाया गुर पूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा मेरे मंत्र प्रेम नाम आधार नाम जपी नामो सुसार नाम जपो मेरे सज्जन सेना नाम बिना में अवर ना कोई वड़े पाग गुरमुखर लेना रहाओ। नाम बिना नहीं जीव्या जाए वड़े पाग गुरमुखर पाए नामहीन कालख मुखमाया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया। आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सतगुर नाम दड़ाया रस गाए गुण परमानंदा रहाओ। हर गुण गावे हर जन लोगा वड़े भाग पाए हर निरजोगा गुण विगुण माया मलतारी वेण गुण जन्म मोए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट कीए नानक गुरमुख मत अद कढ़ीए। आसा महला चौथा नाम सुनी ना मुंह मन पावे वड़े भाग गुरमुख कर पावे नाम जपो गुरमुख परगासा नाम बिना में तर नहीं काई नाम रव्या सब साज ग्रासा रहाओ। नाम में सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावे तो मेरा मीत सखाई नाम गीन गए मूड नंगा पच पच मुए फिर देख पतंगा आपे थापे था प्यो थापे नानक नाम देवे घर आपे। आसा महला चौथा गुरमुख हर घर वेल वधाई हर लागे हर असकर साई हर घर नाम जप अंत तदरंगा जप जप नाम गुरमुख सालागी मारिया काल जम कंकर पोयंगा रखाओ। हर घर गुरु में भगत रखाई गुर तुठा सिख देवे मेरे पाई होम में कर्म किस बेद नहीं जाने ज्यो कुंतरन आए खाग श्री शाने जे बड़ पाग होवे बड़ ऊचे नानक नाम जपेसा सूचे। आसा महला चौथा हर घर नाम की मन भूख लगाई नाम सुने मन तृप्त मेरे पाई नाम जपो मेरे गुर सुख मीता नाम जपो नामे सुख पावो नाम रखो गुरमत मन चीता रहाओ। नमो नाम सुनी मन सरसा नाम लाल है गुरमत बिगसा ना बिना कुश्ती मो अंधा सब निफर कर्म किए दुख तंदा हर हर हर जा जपे बड़ पागी नानक गुरमत नाम लेव लागी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद महला चौथा राग आसा कर छेवें के तिन हथ कर तंत वजावे जोगी थोथर वाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी यो मनुआ हरंग पेन जोगी हर देव मती उपदेश जुग जुग हर घर एको वर्त आगे हम आदेश हरगाओ। गावे राग पात बबोले यो मनुआ खेले खेल जोवे कूप सिंचन कौ बसद उड़ बैल गए चर बैल का नगर में कर्म हरबो हर जमे हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हर सिंचो गुरमत जेत जोगी जंगम सिट सब तुमरी जो द्यो मती तेल जन नानके प्रभु अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल। आसा महला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आप तजात पार खिन लाग हों तब लग समारो नाम मेरे मान ऐसी पवित बने आई हों हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रखाओ। तब को मिले पंच सत गायन तब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लाग तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाप सारे तब को हाथ पसारे हाथ पाप सारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे कब को लोगों को पति आवे लोग पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदे सत्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा महला चौथा सत संगत मिलिए घर साधु
मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया कल चानन अज्ञान अंधेरा जाए, हर जन नाचो हर घर त्याए, ऐसे संत मिलो मेरे पाई, हम जन के तो वे पाए, रघाओ हर घर नाम जपो मन मेरे, अन्दन घर लेवे लाए।

जगत गृह ऐसा गए सुंदर लाल प्रभ पावाता सदा निहाल बिंजन भोजन अनग प्रकार रंग तमाशे बहुत विस्तार राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन ही त्रप तृष्णा ना जायस बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरयो ना कोए जिस मस्तक भाग तिन सदगुर पाया पूरी आसा मन तृप्ताया प्रभ मिलया ता चूकी डंजा नानक लद्दा मन तन मंजा आसा महला पंजवा पंच बदे प्रथमे तेरी निकी जात द्वितीया तेरी मनिए पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगड़ रूप मन में अवमान सोनी स्वरूप सुजान विचक्कन।

मिल सतगुर धन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई, पाए न जल जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई, हरहाओ टोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रह अघाए, सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस धन ते सब जग बरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लके का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मोहल्ला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्मे तो जन हो मुआ, गोविंद भगत अस्तर है थिया, रहाओ जिनते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर हुए प्रभात, माया मोहे तो रहे अपागे, गुर प्रसाद को विरला जागे, कहो नानक गुण गई है नीत, मुख उज्जल हुए निर्मल चीत, आसा महला पंजवा, नौनद तेरे सगल निधा।

रब रहे आपर सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा मोहल्ला पंजवां, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन, उत्तम मत मेरे हृदय तू आव, त्यावो गावो गुण गोविंदा, आत प्रीतम मोहे लागे नाव, रहाओ तृप्त अगामन साचे नाय, हर सड़मजन संत तुराय, सामे जानो करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक, दास अगल का छोड़ अब महान, नानक कौ गुर दीनो दान। आसा मोहल्ला पंजवां, बुद्ध परगास पई मधपूरी, ताते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले, बूढ़द कोर अंधकूप मह, निकस्यो मेरे भाई रे, रहाओ मां अगा अगन का सागर, गुर भोयत तारे रतनागर, दुत्तर अंध बिखम ए माया, गुर पूरे प्रगट मार दिखाया, जाप ताप कश उगत न मोरी, गुर नानक सरण।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करने हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजा।

लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कार सेवा महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना, सूग सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जान रसक रस गुण गावे, मसलत मता सियान बजन की, जो तू करह करावे, रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त अघाए सही जन पूरे, सुख निदान

नहीं दरगह टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया, रहाओ किरत पया निंदक बपरे का।

योग बनया तेरा कीर्तन गाई, सर्व सुखा बने तेरे ओले, परम के पर्दे सतगुर खोले, रहाओ हुक्म बूज रंग रस माने, सतगुर सेवा महान निर्वाणे, जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवान, नाम रत्ता सोई निर्वाण, जाको मिलो नाम निधाना, पंत नानक ताका पूर खजाना, आसा महला पंजवा, तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो अस्थान बतावो मीता, जाके हर घर कीर्तन नीता, हरहाओ शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक सुर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभु कृपा ते मन वसे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संघर कीर्तन गाईए, ये स्थान गुरु ते पाईए, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बार फन सूखा, हर सिमरत सगल बिना से दुखा, सगल सुख जा तू चित आवे, सो नाम जपे जो जन तु पावे, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तहे दुख डेरा, हुक्म बूझे सोई परवान, साज शब्द जाका निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आसा महला पंजवा, जहां पठावो तह ते जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा तेरे गोविंद गुसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अघाई, रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, ताओ प्रसाद

तोई जो प्राणी काऊ न आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम साध संग मन सोवत जागे ता प्रभु नानक मीठे लागे आसा महला पंजवा एको एकी न निहारो सदा सदा हर नाम सुमारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रसाद साध के संगे हर हर नाम त्यावो रे हरहाओ सगल समगरी जाके सूद परोई कड़कड़ अंतर रव्या सोई ओबद परलोखिन में करता आप लेप निर्गुण रहता करन करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आसा महला पंजवा कोड़ जन्म के रे पवारे

गुरपूरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सम्हारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, हरहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, हरहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाव, कहो नानक गुर ब्रह्म पखोया, अंद रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम मखाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो सरनाई, मुको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चय नाय, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब तिसका होए, हे जन लेप न व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जन के, हाथ निर्मल दास की जुगता, हरहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण कौ लिहो उधारी, हरहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, हरहाओ मोह परमो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहां सुख आगे गद।

नरक सुर्ग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम सबल जन्मता का प्रवान। आसा मोहल्ला पंजवा सोए रही प्रभ खबर न जानी। और पया बौर पछतानी प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी। प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी। रहाओ कर्म अमृत आन निसारे खिसर गयो तूम पर डारे। साध मोहे लादी अंकारे दोष नहीं प्रभ करने हारे। साध संग मिटे परम अंधारे।

ते आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, हरहाओ अनक दुख देवे अवरा कहो, पहुंच न सके जन तेरे कहो, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जे, केवल नाम तेरे मैं दीजे। आसा महला पंजवा, मन तृप्तानु मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद परी बनी, जाके गृह सब किस गए पूर्ण।

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट भय रे जाका अपग सब संघ है सदा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त इसी लेना संत चरण ओ आयो शरणा आचड़े उहर साल।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाए ठगौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया। गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना। तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बाधा, हम पचे मनमुख मुँह राखा। गुरु नानक बाँ पकड़ हम राखा, आसा महला पंजवा। सर्व दुख जब सरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी। संतृप्ता से हर घर त्याए, हर कृपा अपने नाए लाए। सर्व सुख पर तुमरी रिजाए, रहाओ संग होवत को जांत दूर। सो जन्म मरता नित नित चूर, जिन कछ दिया ते चित तनाहे। मां बिखिया में दिन रहन जाहे, कहो नानक प्रसिमरो एक। गद पाई गे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा। नाम जपत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया। सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर। गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वस गद आया। जिस

सर्व सुख पावे, आवर काहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद ब्राह्मण वासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह सुमागी, जाकी बख्श ना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समग्री गृह जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

तेज चिर जीवन उपजिया संयोग उदरे माए आए किया निवास माता कै मन बहुत विगास जम्या पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सामे लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी उगुं बालक जन्म लिया मिटिया सोग मा आनंद चिया गुरबाणी सखी आनंद गावे साचे साहिब कै मन पावे। वदी वेर बो पीढ़ी चाली धर्म कलागर बंद बहाली मन चिंदिया सदगुरु दिवाया पै अचिंत एक लिवलाया ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान बुलाया बोले गुर के पान गुजी शन्नी नाही बात गुरु नानक तुठा की नींदात। आसा महला पंजवा गुरपूरे राख्या दे हाथ प्रगट पया जन का प्रताप गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई जी की अरदास गुरु पे पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरदेव पूर्ण होई।

वंजन वहंदे बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरमल हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गढ़े निवारे सदगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

गए वो दिसे ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा कर नावा महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चितव चितव सर्व सुख पाव, आगे पाव के ना पाव, एक दा तार सगल है जाजक, दूसर कह पे जाव, औ मांगो आन ले जाओ, सगल शद्र पद एको ठाकुर, कौन समसर लाव, हरहाओ उठो बैसो रह के ना सको, दर्शन खोज खुजाओ, ब्रह्मादक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको मैल दुलपाओ, आगम आगम अगाध बोध तीमद पर ना पाओ, ताकि शरण सदपुरख की सदगुर पुरख ते आव, पयो कृपाल दयाल प्रभु ठाकुर काट्यो बंद कराव, कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म न आवो। आसा महला पंजवा, अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी संग चलन

मार्ग पंथ सुम्हारी ना गिरड़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नैन

बस्त रही अमाना, छोड़ जाए तिन ही सो संगी, साजन स्यों बैराना। सगल संसार हे बिद व्याप्यो, सो उभरियो जिस गुर पूरा, कहो नानक पसागर तरियो, पए पुनीत शरीरा। आसा महला पंजवां दो पदे, लोक मानो सोई तुम पेखेओ, मुड़ मुग्ध मुकुरानी, आ कुमाने कौले बंदे, फिर पाछे पछतानी। प्रा मेरे सब दे आगे जानी, प्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी अरहाओ। जित जित लाए तित लागे, क्या को करे परानी, बरसलो पार बंसो आमी, नानक सद कुरबा।

निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी, जो अपने प्रभावे तिस की सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसन आवे। आसा कर ग्यारवां महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ पे दिखावे बहु विद, जैसा है ओ तै सारे, अनक जोन प्रम्यो प्रपीतर, सुखे नहीं परवे सारे। साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर अनीता रे, साह संग मिल हर गुण गा।

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने,

मो कुटुंब दिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास माने मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवां ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पागी नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवां गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईते ऊते काट काट काट काट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवां हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवां अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे

पाया सेव कमाया गौन रस रस गावे एक है अस दर्श ते अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आईगे सर्व फल पाईए सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख विधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हों कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर केटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवां कर चौदवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवां मिल राम प्यारे तुम मिल तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण प्रभु संग वस आसा महला पंजवां तार पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठा रहे तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपत बाजी हार मुका पछतायो मन फोरा टान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए काम ना करे ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवां बापार गोविंद नाए साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन निधान पाए सब तजी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां।

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जं पयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निरकर तिसे थानः हार रस रसे मानः लाती तिस पूगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सहज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन दिल सुनीगा।

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृतस खोजत पावो सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लभ लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गात गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम सिया सुखदाता अनदिन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास कर विचार आचार पराता सदगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना एक तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मेले काल कंटक मारे सज पेले यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख चीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दार कर मैलनी हर पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरप गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस कीए होमे ग्रास एक थाए कीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनघ सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिन से तनका को कहिए बिन गुर राम नाम कत लइए राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिला मनहारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरदाता राम गोपाला क्यों पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रगाया आवर न औखद तंत न मंता हर घर सिमरन केल वखंता तू आप भुलावे नाम सार तू आपे रखे कृपा तार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर सब दे जन्म के लेखे देख अचरज रहे बिस्माद कट कट सुर नर सह समाध परपुर तार रहे मन माही तुम संसर अबर को नाही जा की भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज त्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जमदूत दूत सलागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वचल भगता हर संग नानक मुगत पय हर रंग आसा महला पहला
ਇਕ ਤੁਕੀ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੈ ਦੁਖ ਮਿਟੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈ ਨੀ ਤਦ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖੋ ਪਵਨੈ ਨੀ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ।

ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न जीने तामसी काहे पय उदासा एक बिंद जदन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी भ्रम आवे जावे एक गिरगी सेवक साधका गुरमती लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाणे नानक नाम न विसरे साचे मन माने आसा महला पहला मनसा मने समाए ले।

मैं टेक आधार तू दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही भगत तेरी हैरान दर्द गवावगी दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी वेला सज परवान शब्द पछाण सी सत संतोख कर पाओ उस हर नाम से मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे।

आस तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम समाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोए न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान कर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गो सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साग दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

तन मन शीतल मुख उजले, फिर कह पाए प्यार से सुखाली पिर रवे, हम मैं तिसना मार कर कृपा कर आया गुर के हेत अपार, वर पाया सुहागणी केवल एक मुरार, सबे गुणे बगसाए लए ओन मिले मिलनहार, नानक आखण आखिए

सांत सहित सुखे सब हाट सावा पारी एक थाट जेजिया डन को लय न जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चिलावो लैलाह गुरम कर आवो सदगुर साहो सिख वणजारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

साल संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास कणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो ना मै रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए सब जग चलतो पेखिए नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ मीत साजन सुत बंद प को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरयो तेहे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेहे सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु फावे सो फला तेरे पाने कार जिरास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्राभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा चंता की जत एक ओंकार सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए क्यों तन वेती संत पे प्यारे प्रीतम दे मिलाए तुसी गार दिखिया के

जीवन दर्द दिखाए, जो जी तोते बिछरे प्यारे, जन्म मरे बिख खाए, जिस तू मिले सो मिले प्यारे, तिसके लागो पाए, जो सुख दर्शन।

दूजी ना ही जाए। जो तू करावे सो करी प्यारे, आवर किश करन न जाए। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जे चपिए घर नाओ। साई कार कमावनी प्यारे, पुर मस्तक लेख लिखाए। एक को आप वर्तदा प्यारे, घट घट रहा समाए। संसार कूब ते उधर ले प्यारे, नानक हर सरणाए। राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद ससे सोए सिटजन साजी, सबना साहेब एक पया। सेव तरह चित जिनका लागा, आया तिनका सबल पया। मन का गे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़िया। रहाओ ईवड़ी आदि पुरख ए दाता, आपे सच्चा सोई। इना अखरा में जो गुरमुख बूझे, तेस सिर लेख न होई। ऊड़े उमा ताकी कीजे, जाका अंत न पाया। सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। गंगे ज्ञान बूझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई। सर्व जिया में एको जाने, ताहो में कहे न कोई। कक्का केस पुंडर जब हुए, विन साबूने उजलिया। जमराजे के हेरू आए, माया के संगल बंद लया। खखे खुंद कार सा आलम, कार खरीद जिन खर्च दिया। बंधन जाके सब जग बंधया, अवरी का नहीं हुकुम पया। गगे गोए गाय जन छोड़ी, गली गोविंद गर्व पया। ताड़ पांडे जन आवी साजी, प्याड़ नवागे तई किया। कगे काल सेक जे ताले, शब्द गुरु के लाग रहे। बुरा पला जे सम कर जाने, इन बिद साहेब रमत रहे। चचे चार विरजन साजे, चारे खानी चार जुगा। जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया। छछे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम हुआ। परम उपाय भुलाई ने आपे, तेरा कर्म हुआ। तिन गुरु मिलया, जजे जान मंगत जन जाचे। लग चौरासी पीह पवया, एको लेवे एको देवे। अवर ना दूजा मैं सुनया, झजे चूर मरो क्या प्राणी। जो कुछ देना सो दे रहा, दे दे वेखे हुकम चिलाए। ज्यो जिया घर जक पया, न्यन्ये नदर करे जा देख। दूजा कोई नाही, एको रब रहा सब थाई। एक वसया मन माही, तट टंच करो क्या प्राणी। तड़ी के मौत के उड़ चलना, जुए जमन हारो अपना। भाज पड़ो तुम घर सरना, ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर। हर चरणी जिनका चित लागा, चित लागा सेई जा निस्तरे। तौ प्रसादी सुख पाया, डडे डंप करो क्या प्राणी। जो किश होआ सो सब चलना, किसे सिरे वो तासु पाव। सर्ब निरंतर रब रहया, टड्डे टाए उसारे आपे। यूं तुझ पावे तिवे करे, कर कर वेखे उगम चलाए। तिस निस्तारे।

तन तेरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे सेजा सुहावी संग तिरके सात सर अमृत परे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम मैं मंतन घर पावे प्रसंग मराती राम ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे तो गुण पिछाणे ता प्रव जाने गुणे वस अवगुण नसे तुझ बाज एक तेल रह ना सक कहन सुन ना तीजे नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रसमन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली कारण कारण समरसरी तर आप कार्य सारे नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार हम कर साचा सोयलड़ा

तन मन पेरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाई है बहुत चतराई है पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोकाने।

मनो मेरा मन रत राम प्यारे राम सच साहेब आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोच अपर अपार पार ब्रह्म प्रधानो आजुगा दी है पी होसी अवर झूठा सा मानो कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाणे महर्ष नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सिखाई राम हो मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित भाई सुच तराई संग न संपे नारे सायर की पुत्री पर घर त्यागी चरण तले विचारे आद पुरख चलत दिखाया जे देखा तै सोई नानक हर की भगत न छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच समाले राम अगुण मेड़ चले

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सवाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता तिर मिलिया हदूरे देख तिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए तिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तप्त बुझाई राम शब्द तप्त बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीत में अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंद पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तेरे रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुगचारे।

नाम समाया, जिन अंतरे राम नाम वस, तिन चिंता सब गवाया राम, सब अर्था सब धर्म मिले, मन चिंदिया सो फल पाया राम, मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया, राम नाम गुण गाए, दुरमत कबुद गई सुध होई, राम नाम मन लाए, सफल जन्म शरीर सब हुआ, जित राम नाम पर गासया, नानक हर पै सदा दिन राती, गुरमुख निर कर वासया, जिन श्रद्धा राम नाम लगी, तिन दूजे चित न लाया राम, जे धरती सब कंचन कर दीजे, बिन नावे अवर ना पाया राम, राम नाम मन पाया, परम सुख पाया, अंत चलदियां नाल सिखाई, राम नाम तन पूंजी संची, ना डूबे ना जाई, राम नाम ए जुग में तुलगा, जमकाल नेड़ ना आवे, नानक गुरमुख राम पछाता, कर कृपा आप मिलावे, रामो राम नाम सत्य, सत गुरमुख जानिया राम, सेवको गुर सेवा लागा, जिन मंतन अर्प चढ़ाया राम, मंतन अर्पया बहुत मन सरदया, गुरसेवक पाए मिलाए, दीना नाथ जिया का दाता, पूरे गुर ते पाए, गुरु सिख सिख गुरु है, एको गुर उपदेश चलाए, राम नाम मंत हृदय देवे, नानक मिलन सुपाए, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आसा शांत महला चौथा, कर दूजा हर घर करता दुख बेनास, पतत पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गद पाई, हर उत्तम हर घर काम जियो, हर उत्तम काम जप गे हर नाम, हर जपिए अस्थिर होवे, जन्म मरण दोवें दुख मेटे, सहजे ही सुख सोवे, हर घर कृपा तारो ठाकुर, हर जपिए आत्म राम जियो, हर घर करता दुख बिनासन, पतत पामन हर नाम जियो, हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सब गुर पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जबत सुनत दुख जाए जियो, हर हर नाम जपया दुख बिनसया, हर नाम परम सुख पाया।

मरण दोवें दुख मेटे, हर रामे नाम सुमाया, हर जान प्रभ रल एको होए, हर जान प्रभ एक समान जियो, तुर मनन लखाया गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजे बिनसे बिनस बिनासे, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रस करसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरण ना होई, हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावे सोई, जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नावे अवर ना कोए जियो, जग उपजे बिनसे बिनस बिनास, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, आसा महला चौथा शंत, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आद निरंजन निरंकार जियो, ताकीगत कही न जाई अमित वड्याई, मेरा गोविंद अलख अपार जियो, गोविंद अलख अपार अपरंपर, आप अपना जाने क्या ए जंत विचारे कहिए, जो तुद आख मखाने, जिसनू नदर करे तू अपनी, सो गुरमुख करे विचार जियो, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख परंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर, सब मै रहया समाए जियो, घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख, अदृष्ट अगोचर गुरमुख अलख लखाया, सदा आनंद रहे दिन राती, सहजे नाम समाए जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निधान जियो, हर हर प्राप्त एको अवर न कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो, पुरख सुजान तू प्रधान, तू देवड अवर न कोई, तेरा शब्द सब तू है वरते, तू आपे करे सोई, हर समय रविया एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो, तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निधान जियो, तब तू है करता सब तेरी वड्याई, जो भावे तिवे चलाए जियो, तुद आपे भावे तिवे चलावे, सब तेरे शब्द सुमाए जियो, सब शब्द सुमावे जंत पावे, तेरे शब्द वड्याई, गुरमुख बुद्ध पाईगे आप गवाईगे, शब्दे रहा सुमाई, तेरा शब्द अगोच गुरमुख पाईये, नानक नाम सुमाए जियो, तब तू है करता सब तेरी वड्याई।

ना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब कुछ जानदा, सिर रोग हाथ दीजे, जिना नानक गुरम खिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजे, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बारों पोल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नाही, हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सो थान पालिया, ले तूर मुख लावा, गुर सिखां की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सदगुर पूजया, तिन हर पूज करावा, गुर सिखां मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, तर सेवे पूरा सदगुरु, भुख जाए लहे मेरी, गुर सिखां की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी, जन नानक हर पुन बीजया, फिर तोट न आवे हर पुन केरी, गुर सिखां मन वाधाइया, जिन मेरा सदगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखां मन मिट्टा, हर दरगे गुर सिख पैनाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा, जन नानक हर घर होया, हर घर मन उठा, आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे, तिस की तिसना पुख सब उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर घर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवे, जन नानक कौ हर कृपा कर, निद जपे हर नाम तरावे, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया, तिना फिर बिघन न होई राम राजे, जिन्नी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया, तिना सुख सद होई, जिना नानक सतगुर पेटिया, तिना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चक मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवा उठ वंज वटाउड़िया तै क्या चिर लाया मोलत पुनड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया।

प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास, चातरक चित प्यास हे कण बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिनसत ताप तापा बिनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत कहना सुंदर चतर सुजान स्वामी।

आप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया, हर कंठ लागे दिस भागे, मिलना सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए खान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सा।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालीं आकाशी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कुतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्ब प्यार कुदरत जाति जैसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन

पूर सगलया पौलिखया सिरलेख। नानक निरभउ निरंकार सच एक, महला पहला। नानक निरभउ निरंकार पुर केते राम रवाल, केतियां कन कहानियां केते वेद विचार, केते नचे मंगते गेड़ मुड़ पूरे ताल। बाजारी बाजार में आए कटे बाजार, गावे राजे रानिया बोले आलपताल। लखटकिया के मुंदड़े लखटकिया के हार, जित तन पाई है नानका से तन होवे शार। ज्ञान ना गले टूडिये कतना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाई है होर हिकमत हुगम खुवार। पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर।

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय।

पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले है सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम यो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला हौ मिच आया हौ मिच गया। हौ मिच जमया हौ मिच मोआ। हौ मिच दिता हौ मिच लया। हौ मिच खटिया हौ मिच गया। हौ मिच सचियार कूड़ियार। हौ मिच पाप पुन विचार। हौ मिच नरक सुरग अवतार। हौ मिच हसे हौ मिच रोवे। हौ मिच परिये हौ मिच तोवे। हौ मिच जाति जिनसी खोवे। हौ मिच मूर्ख हौ मिच सियाणा। मोह मुक्त की सार न जाना। हौ मिच माया हौ मिच छाया। हौ में कर कर जनते उपाया। हौ में बूझे तांदर सूझे। ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे। नानक हुकमी लिखिए लेख जेहा वेखे तेहा वेख। महला दूजा होमे एहा जात है। होमे कर्म कमाहे। होमे एही बंद।

पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना की लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा नीसान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर हो में चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया ते

अंधी रित ज्ञान विहूणी भाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सीगार, उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत

रसवा हो, कालजुग रास अगन का ऊर अगे रसवा हो। महला पहला साम कैसे तंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे सब को सच समावे। रेग कहे रहया पर पूर, राम नाम देवा मैं सूर। नाए लय प्राशित जाहे, नानक तो मोखंतर पाहे। जुज में जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया। पार जाद गोपी ले आया, बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ,

हाथशुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, क्योंकि ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा, नदर उपठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगना पेखना पाएंदा। श्लोक महला पहला, जे मुहा का कर्म होए पितरी दे, अगे वत सन्याणी है पितरी चोर करे, वड्डे हाथ दलाल के मुस्पी एक करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे, महला पहला जो जोरू सिर नावणी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख बस नित नित होए खुवार, सूचे ए ना आखी है बैन जे पिंडा तोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसे आसोए, पौड़ी तुरे पराने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया

गोर चरण लाघम बिनवता पूछत कहे जियो पाया कामन काज जग उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभो जित

तपि सन्यासी बो तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा तार अंत तऊ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु भव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर यो राम में जंपो मेट जन्म मरना।

हंस अकेला जाई। कहेत कबीर सुनो रे संत, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जामनी हटे गुसाई। दो तो

फिर पछताना बिरध पायो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलयो अरहाओ, चूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसै।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खिंच तेरी सब लीना, श्रवणन विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बस थाके पंच दूत सब तस्कर,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपुन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछान्या तिन सरपनी खाई सरपनी ते आ

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो नहा प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

छोड़ परम निधान बाबा माया मोहित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्जे पास ना देखे आग, काल पास ना मुग्ध चेत कनक का मन लाग, कर विचार विकार परहर

गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गमदिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजाद कुलखनी सौरे पेये बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली।

गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। तूत एक मन सत सांस जैसे, ओत पोत प्रसोई रहाओ, जल तरंग अर्थ

संत अनंत अंतर नाही आसा, तुम चंदन हम एरंड बापरे संग तुम्हारे बसा। नीच रूख ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा, माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे।

निमत नाम दे दूध पी आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया। ज्ञान रविदास राम रंग राता क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्र कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ। जब कछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोमन लगत है। मान बद क्रम रस कसे लोभाना बिनस गया जाए कहूं समाना। कहे रविदास बाजी जग पाई बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत तन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने। तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ राता मन बिसरे प्रभ हीरे। अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे चार विचार न जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपांती। जन्म मरन फिर तानिया जुगत जान नहीं रिदे निवासी। जलत जाल जम फंद परे बिख बल संच परे मन ऐसे। परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया। ध्यान मान मन एक मये प्रेम भगत मानी सुख जानिया। तृप्त अगाने मुक्त पये जोत समाए समानी जाके असली प्रभ पहचानिया। तन्ने तन पाया तरणी तार मिल जन संत समानिया। महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग

प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारिया ओ कर कर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वडभागा रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर बेबे न जानस कोई जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई अरहाओ जननी केरे उदर उदकम पिंड किया दस द्वारा दे आहार अगन में रख ऐसा खसम हमारा कुम्मी जल माहे तांतिस बाहर पंख कीर्तन नाही पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा सेज फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सत्या जिन मन होर मुख होर ते कंडे कत्या।

रीत रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी। गुरप्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सकाई। हर बिन होर रास कूड़ी।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रोसे ती रंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कबहू जाई हराओ करत करत अनकबो पाती।

सर्पदपालक प्रको सदा सलाही रहाओ सास सास तेरा नाम समारो तुम ही को प्रव्याही नानक टेक पई करते की हो रास बिडानी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजे।

गुणित नाम ना गायो रहाओ, कौडी कौडी जोरत कपटे अनक युद्ध करतायो, बिसरत प्रभ केते दुख गनिये मामो नी खायो, करो अनुग्रह स्वामी मेरे गनो नाम होए कुमायो, गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो, गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत, छोड़ आन व्यवहार मिथिया पसदा भगवंत रखाओ, नाम एक आधार भगतां

साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रदया तारी बक्स।

दुख अनहेरा पै बिनासे, पाप गए निखूट, हर हर नाम की मन प्रीत। मेर साध बचन गोविंद ते आए, महान निर्मल रीत रहाओ, जाप ताप अनेक करणी, सबल सिमरत नाम, कर अनुग्रह आप राखे, पय पूर्ण काम, सास सास ना बिसर कब हूँ,

भगत गोपाल सिमरन मिट जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुरहृद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्व विद भ्रमते पुकार है अते नाही छोड़।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमन सरमन अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरन काल

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रकाश पए सासंगे दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्र स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण प्रयो नानकता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदिया महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियले

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसे हे जा।

तारण राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हरमण मत तत् ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमण चल चित विद प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिड़ंग मती गुरवाक शब्द रतन परमात परमना चूकई जग जन्म व्याद खपं अस्थान हर नेह केवलं सतमती नाम तपं इहो जग मोहित व्याप्तं दुख अधक जन्म मरणं भज सर।

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करणा मैं चिंत मेट पुरख अनंत

जगदीश जप मन तारद प्रतीत जी दया मया सर्वतरमण परमहंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान पर

कायागढ़ पीतर कूड़ कुसत अभवानी परम पूले नदर ना आवनी मानमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लभनी कर पेख सके पेखवानी गुर शब्दी खोलाइन हर नाम जपानी हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी श्लोक महला तीजा वाह वाह करते हैं रैन सुख विहाए वाह वाह करते हैं सदा आनंद होवे मेरी।

पौड़ी ए मना अत लोभी नित लोभे राता माया मनसा मोहनी दहत फिराता अगे नाओ जात ना जाए सी मनमुख दुख खाता रसना हरसना चखे फीका बोलाता जिन्ना गुरमुख अमृत चाखे।

मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार राख लियो प्रभे अपने नानक सरबरे हार महला पंजवा खांदियां खांदियां मोह कठा पए नंदियां सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी।

मार्ग कैसे जीवे रग राई, तनना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ, जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, ओछी मत मेरी जात जुलाह। हर का नाम लयो मैं लाह, कहत कबीर।

कह किन बूझिए हरमैया आकुल री बाई हरहाओ क्यों आका से पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई ज्यों जल माजे माचलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यों आका से कड़ू अलो मृत्युना परया नामे चे स्वामी बीठलो जिन तीन जरया गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद दूता बशरे थनो बिटारे हो फूल पावर जल मीन बगारे हो माई गोविंद पूजा कहां ले चिरावो आवर ना फूल अनूप ना पावो रखाओ मैला गर बेरे गए पोयंगा बेख अमृत बसे एक संगा तूब दीप नहीं बेदे बसा कैसे पूज करे तेरी दासा।

गोविंदेत जप नर सगल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सबटं पाव भूत सर्वगतं एक ओंकार सत नाम।

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर किसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटया अंधेरा दुख नाठा आम्यो हर अस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पायड़ा कर आए। अराग बिहागड़ा महला पंजवां,

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्मपूरे, अन दिन नाम खाना राम। अमृत बाणी उच्चना हर जस।

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भय किस कहन न जाई राम जिस ते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल मईल ए करव्या नै दूजा दृष्टाया बण त्रैण तिर पवन पूर पूरन कीमत कहन न जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवां खोजत संत फिरे प्रभ प्राण अधारे राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर दया।

से पासे ती कर जाही। नरपत जान गयो सेवक सियाने राम, सर पर विछड़ना मोय पछताने राम। हर चंदौरी देख पूला का अस्तित पाई है, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हौ हौ करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के

तू मन लह सो जन साबास तव तेरा चोज वर्तदा दुख सुख तुझ पास। सलोक महला तीजा गुरमुख सच्चे पाम दे दर सच्चे सच्यार साजन मन आनंद है गुर का शब्द विचार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया।

ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखे विसे आपे जित पावे तित लाए हर एक ना मार्ग पाए आपे हर एक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सच तपावस कर वेखे चलत सवाए।

जे आसा अंदेसा तज रहे गुरमुख पिखिया नाओ इसके चरण पखाली है। नानक हो बलिहारे जाओ मोहल्ला तीजा नानक तरवर एक फल

तोड़े सच वस अज्ञान अंधेरा जाए सब किश देखै तिसे का जिन किया तन साज नानक शरण करतार की करतार आखे लाज पौड़ी जदों आपे थाड़ किया बै करते तदों पुछना सेवक बिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर न दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनाईन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सोतिया सरोक महला तीजा गुरमुख प्रसे

तिसरा कर सार गुणमंडे कर सील क्यो सर्व मास आहार गुरमुख पाइये नानका खादे जाए विकार मर्दाना पहला काया लहान आव मद मजल तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुल आ जाए। कीमत कने न पाई, इते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमेओ है, गुर कृपा ते रहया सुमाए। आपे मिलया मिल रहे, आपे मिलया आए। महला तीजा, ए मन इओ तन नाम है, जित

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहा तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कह पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्म में आवंदा सब किस हुक्म में जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग न होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, हो दातार ना सुज।

आए, निर्मल नाम से मन आए, पर में भूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुवार, नानक सेवड़ भागी जिन घर नाम के आया, गुर प्रसादी मन मसाया, वढ़ांस महला तीजा, हम में नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, हम में जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो हम में जाए रखाओ, हम में सब शरीर है, हम में ओपत होए, हम में वड़ा गुबार है, हम में विच बुझ न सके कोए, हम में विच भगत न हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, हम में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हम में गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़ांस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक को पव ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नित पखा फेरी सेव कमावा, इस आगे पानी टोवा। नितन सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे, मेरा स्वामी

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वढ़हंस महला पंजवा कार पहला, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, आज ऊंचा ताका दरबार, अंत नहीं किस पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावे, एक तिल ताका मैल न पावे, सुहावी कौन सुवेला, जित प्रमेला रहाओ, लाख भगत जा को आराध, लाख तपीसर तब की साध,

आओ। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृट सुजानी, सचगुम तुम्हारा तत् निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभु अविनाशी, तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहेब परपुर लीना, वढ़ंस मोहल्ला पंजवां, तू बेअंत को बिरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पछाने, सेवक की अरदास।

एत उद देखो ओड़ तुम्हारी मोए निर्गुण गुण किसी न जाता। नानक साधु देख मन राता वढ़ांस महला पंजवां।

प्रीतम भाई मैं मिलियो मित्र सुखदाता। ओ जी की मेरी सा वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हम एक खेन तिस बिन रह ना सका ज्यों चातरक जर कौ बिललाता। हों क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता। हों पई उड़ीनी कंत को अमाली

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, ने पाए झगड़ा स्वाम सेती आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री की।

ब्राह्मणा सभ्यो पाइगन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे। किस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले कर्म होआ तुर कदे। सब उपाय गिने आप आपे नजर करे, वढ़ांस महला।

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सदगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार परा जे

गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप शाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच।

चीज मन अंदर सच्चे शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड़पा गो राम। गुरमति मन कर वसया सच्चे शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो साचरते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड़िया ई राम। गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड़ियाई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहा सुनाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसे ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके सचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जमकाल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है

ठाकुर मेरे कित मुख तुसा लागी, गुण अवगुण मेरा किशना बिचारिया बक्सली आखिन माघी। नौंद पाई वजी वधाई वाजे अनगल तूरे, कहो नानक मैं वर कर पाया मेरे लाथे जी सगलब सूरे। सलोक क्या सुनें दो कूड़ वंजन पमन चुलारिया, नानक सुनियर ते प्रवान जो सुनें दे सच तनी। शंत तिन कोल कुमाई जिन प्रसरवणी सुनिया राम, से सह सुहेले जिन हर गरसना पणिया राम। से सह सुहेले गुणे अमूल्य जगते उधारने आए, भय बोच सागर प्र

से उबरे सटे सिउं लिवलाए पौड़ी तित जाए बहो सत संगति जिथे हर का हर नाम बलोइए सहजे ही हर नाम लिहो हर तत् न खोइए नित जप्यो हर हर दिन सुरात हर दरगह टोइए सो पाए पूरा सदगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लिखोइए।

तू करण कारण समर्थ है सह सृजनहारे जिस तू मिले प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे हों बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा

काया निर्मली जो सच नाम सच लागी निर्मल जोत निरंजन पाया गुरमुख परम पौ भागी नानक गुरमुख सदा सुख पावे अन दिन हर बैरागी पौड़ी से गुर सिख तन तन है जिन्नी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सतगुर नाम दरड़ाया तिर होमे दुबदा भन्नी बिन हर नावे को मित्र नाही विचार डिठा हर जन्नी जिन्ना गुर सिखा कहो हार संतुष्ट है तिनी सगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम त्याय दे तिनी चढ़ी च वगन वन्नी सलोक महला तीजा मनमुख कायर क्रूप है बिन नावे नक नाहे अन्दन तन दे व्यापया सुपने पी सुख नाहे।

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम निवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ ओस नू सुख न उबज भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सिउं लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न हो गई हौमे शब्द जलाए कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर सांत मन सुख होए सह संजम कार कुमाए नानक पूरे कर्म सतगुर मिले हर जीव कृपा करे रिजाए पौड़ी जिसके

तामन घारा यो मनुआ सदा सुख वस सहजे करे वापारा अंतर गुर ज्ञान हारतन है मुक्त करा मनहारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श त्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तो सदगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस घर नाम सुने मन अंध पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सदगुर सेवा कर घर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया श्लोक महला तीजा मन हड़के ने ना पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए नाम रतन हर प्रगट होआ नानक सहज समाए महला तीजा सबदे साधन आयो नाम न लगो प्यार रसना फिक्का बोलना नित नित हुए खुवार नानक किरद पय कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम को सांते आई तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम हर भगत पाई तन तन हर भगत सदगुरु हमारा जिकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई तन तन हर ज्ञानी सदगुरु हमारा जिन वैरी मित्र हम को साध समध दिखाई तन तन सदगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई श्लोक महला पहला कर ही मुंद वदेश।

की खबर ना पाई, अखी मीड़ चिल्लिया अंधियारा, हर दर्द से ना पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ता अखी वेखा कहना कथन ना जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गुरमन परम न पाग सच नाम वड्याई, सोरठ मोहल्ला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज विड़ाना जल थल।

ऐनस प्रभाते हर रसना जाप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे ऐनस नाम रते से सूचे मर जन में से काचे अवर ना दिसे किस सालाही किसे सरीक न कोई प्रमत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर।

प्यारे रखो पैज हमारी रखाओ। शब्द सलाई सदा हो जीवा गुरमति पौ भागा, मेरा प्रसाचा अत सवाल्यो गुरसे व्याचित लागा। साचा शब्द सच्ची सज बाणी तो जन अनदिन जागा, मां गंभीर सदा सुखदाता इसका अंत न पाया। पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम चुकाया।

का तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा, तो सिख सका बंद पै भाई, जे गुर के पाने विच आवे, अपने पाने जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए।

जेवड़ अवर ना कोए सब कटिया पे भोग वै प्यारा विच नारी पुरख सब लोए नानक गुप्त वर्त दा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सोरठ महला चौथा आपे ही सब आपे प्यारा आपे थापे थापे आपे वेख विकसदा प्यारा कर चूज वेखे प्रव आपे आपे वण तिण सब तरह प्यारा आपे गुरमुख जापे जप मान हर हर नाम रस थापे अमृत नाम महारस मीठा।

तब तप आपे सतगुर आप गए चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाउज पाएंदा प्यारा आपे ही जप जप आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलांदा प्यारा जन नानक हर स्थापे सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे सौ आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया हर घर नाम निधान।

संत संगजा का मन शीतल, ओ जाने सगली ठंडी। होमे रोग जा का मन व्यापत, ओ जन्म मरे बिल लाती। ज्ञान अंजन जा की नेत्री पड़िया, ताको सर परगासा। अज्ञान अंधेरे सू सनाही, बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक इहो सुख मांग है। जय कीर्तन तेरा साधु गावे, तय मेरा मन लागे। सोरठ महला पंजवा, तन संतन का तन संतन का, मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया। संतन बेन अवर न दाता बिया, जो जो शरण परे साधु की, तो पार ग्रामी किया रहा। कोट पराद मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई है। ईगा सुख आगे मुख उजल, जन का संग बड़ भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण, जन की केत की उपमा कही है। अगम्य गोत्र सद अबनासी, शरण संतन की लई है। निर्गुण नीज अनाद अपराधी, ओर संतन की आही। बूढ़ तमोग्रे अंध कूप मह, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा कर पहला, जा के हृदय वसिया तू करते। ताकि तैं आस पुजाई, दास अपने को तू विसरे नाही। चरण तूर मन पाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निधान सुखदाते स्वामी, सबते ऊच बढ़ाई रखाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जा को तुधे आप बुझाई। गुरप्रसाद मिट्यू अज्ञाना, प्रगट पय सबठाई। सोई ज्ञानी सोई ध्यानी, सोई पुरख सुपाई। कहो नानक जिस पय दयाला, ताको मन ते बिसर न जाई। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोए व्यापी। कब ऊचे कब नीचे, शुद्ध न होइगे काहू जतना। ओड़क को ना पहुँचे मेरे मान, साध शरण छुटकारा। बिन गुर पूरे जन्म मरना रही, फिर आवत बारो बारा रगाओ। वो जो परम पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा। पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोग ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात, यो खसम का किया। जाको कृपा करी प्रा मेर है, मिल सा संत नौ लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुर, सबना करत उधारा। कहो नानक गुर बिन नहीं तरिए, त्यो पूर्ण तत् विचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो। राम नाम ता सारा, किलभ काटे निमख आराध्या। गुरमुख पार्यो तारा, हर रस पीवो पुरख ज्ञानी। सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बानी रगाओ। मुगत भुगत जुगत सज पाई गे, सर्व सुखां का दाता। अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता। त्रमणी सुनिए रसना गाइये, हृदय त्याइये सोई। करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई। वडे भाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला। सा संग नान गुण गावे, सिमरे सदा गोपाला। सोरठ महला पंजवा, कर स्नान सिमर प्रव्यापना। मन तन पय अरोगा, कोड विघ्न लाते प्रसरणा। प्रगटे पले संयोगा, प्रबाणी शब्द सुपाखिया। गावो सुनो पढ़ो निद पाई, गुरपूरे तू राखिया रहाओ। साचा साहेब अमित वडाई, भगत वशल दयाला। संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो। जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो। तुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बण आई। प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडे।

बाद एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन तय को दिशा।

तुम सबसा जे सा जनेवाज जियो पिंड दे प्राणा निर्गुनी आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे मेहरबाना तुम करो भला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी।

सुगदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ ताम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाईए हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाईए काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक को पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोगाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो का टायो डेरा अंत मंगल बिसरामा मन बांझत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम भागा कौ नानक ताके पूर करमा जाका गुरचन्नी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा ते आई है सिमरहो हर हर नाम परानी बिरसे काची दे अज्ञानी हरहाओ मृत्युना अर स्वप्न मनोरथ ताकि कछ ना वडाई आराम भजन बिन काम न आवस संग न काहू जाई हो करत बिखाए अवरदा जी को काम न कीना धावत धावत नह तृपतासिया आराम नाम नहीं चीना साध विकार विखे रस मातो असंख खते कर फेरे नानक की प्रा पाए बेनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अवनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिघम अगन को सागर साधु संग उधारे।

जो करे सोई सोई जाने रहे न कछुए शानी रखाओ। जे बा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़दे मह पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा ठक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी। जप अंद करो नित प्राणी हर साचा सिमरो पाई, साध संग सदा सो पाईए हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल जीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा, गुण गाव अजुत अविनाशी आनंदन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कड़ा सोहेली, आद अंत मद नानक तो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी संत या बताव होकारी। जित हो में गर्भ निवारी रखाओ, सर्व भूत पार ब्रह्म करमानिया होवा सगल रे नारी। देखो प्रभु अपने संगे चूके पीत परमारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु दुआरी। कहो नानक जिस मस्तक लिखया तिस गुर मिले रोग बिदारी। सोरठ

ए पीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ। बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुरपूरा फेट्यू वड पागी, जन नान कते ना ताव। सोरठ महला पंजवा, जाके सिमरन सब कछ पाइये, विरती काल न जाई, ते प्रत्याग अवर कतरा चो, जो समय रहा समाई। हर घर सिमरू संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ। सार संभाले नित प्रत पाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नांग प्र तुमरे बिसरत जगत।

पार ब्रह्म निभागी पूरी, ताई बात न रही या उरी, गुर चरण लाए निस्तारे, हर घर नाम सुम्हारे, अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे, माता पिता जो पाला रखाओ, वड़भागी सतगुर पाया, जिन जमका पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा, जब जी वैसे वड़भागा, हर अमृत बाणी गावे, साधा की तूरी नहावे, अपना नाम आपे दिया, प्रवकरण हार रख लिया, हार दर्शन प्राण अधारा, क्यों पूर्ण विवन विचारा, हर कृपा अंतर जामी, दास नानक शरण स्वामी, सोरठ महला पनवा, गुर पूरे चरणी लाया, हर संग सहाई पाया, जय जय गीता सुहेले, हर कृपा पा मिले, हर गुण गावो सदा सुपाई, मन चिंते सगले वल पावो, जी कै संग सहाई ही रखाओ, नारायण प्राण आधारा, हम संत जनारे नारा, पतत पुनीत कर लीने, कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सा जी संग रखवाला, हर दिन रैन कीर्तन गाइये, बौड़ ना जोनी पाइये, जे देवे पुरख विधाता, हर दिन ही जाता, जम कंकर नेड़ न आया, सुख नानक सरणी पाया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे कीती पूरी, प्रव रव रया पार पूरी, खेम कुशल पया इसनाना, पार ब्रह्म मिट्टो कुर्बाना, गुर के चरण कवल तारे, बिघन ना लागे तिलका कोई, कार्ज सगल सुवारे, हरहाओ मिल साधु दुर्मत खोए, पादत पुनीत सब होए, रामदास सरोवर नाते, सबला थे पाप कमाते, गुण गोविंद नित गाइये, सा संग मिल त्याईये, मान बांशित फल पाए, गुर पूरा हृदय ते आए, गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, जन नानक नाम ते आया, प्रभ अपना बिरद रखाया, राग सोरठ महला पंजवा, दैद सदन मेघ कटा काट, दामन चमक डरायो, सेज अकेली नींद नौ नैने, फिर परदेश सिधायो, हुण नहीं संदेश रोम आयो, ए पुसरो सिद्ध करत लाल, तब चतर पात्रो आयो रखाओ, क्यों बिसरे यो लाल प्यारो, सर्व गुणा सुखदायो, मंदिर चर के पंथ निहारो, नैन नीर पर आयो, हो पीत पयो है बीचो, सुनत देश निकटायो, पांबीरी के पाद पर दो, बिन पेखे दूर आयो, पयो कृपाल सर्व को ठाकुर सगरो दुख मिटायो, कहो नानक हम में पीर गुर खोई, तौ दयार बीठ लो पायो, तब रहो अंधेश्वरो मायो, जो चाहत सो गुरु मलायो, सर्व

शीतला ठाक रखाई बिघन गए घरनाई। मेरा प्रभु वसदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की, तब जी भया कृपाला रहाओ प्रभ करण कारण समर्था, हर सिमरत सब दुख लाथा अपने दास की सुनी बेनंती। तब नानक सुख सुवंती सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु त्याए मिल कुशल से ती कर आए।

लाती संग मिलाए लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सर्पस दीने आपे आप मिलाया कहो नानक सर्व तोग पूर्ण।

कौन कर्म विद्या को कैसी, कर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमरै, हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध, जाहे जपे गद पावे, और धर्मता के सवनाहन, हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी, या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याय, सोरठ महल्ला नाम, माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर, मो मन रहो उरझाई रहाओ। सागल जन्म परम ही परम खोयो, न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निस्बासर, न छूटी अदमाई, सा संकब हू न कीना, न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण, अराख लिहो सरनाई, तोरठ महला नाम, माई मन मेरू बस नागे, निस्बासर विखेन को तावत, के बदरो को तागे रघाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन, निमखन ही ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरत्यु, बिरथा जन्म सिरावे, मदमाया के पयो बाबरो, तू इतने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन, ताको मर मना जाना, जबगी शरण साध की आयो, दुर्म सगल बिनासी।

तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार अजहू समझ अज बिगड़ो नाहिन ताज ले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार चोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहा दारा मीत पूसन बंदी फगरे तन स्यों लागे जब ही निरतन देखियो नरको संग शाड़ सा भागे कहो का या मन भौरे कहो इनसे उन्हें लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर निज पोखयो फस की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखियन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्यो गोविंद फिरत आओ सिरानी हो नान घर बिरद पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान थोक सुने वर पै नहीं जा कह संचन माटी मान है रगाव नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोचते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग गए।

दो तुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम पराधी निर्गुणे पाई तुझ ही ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हो पापी पाखंडिया पाई मन तन नाम सेख रहाओ दिख माया चित मोया पाई चितराई पद खोए चित में ठाकुर सच बसे पाई ये गुर ज्ञान सुमोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सुम बैरागिए पाई दार कर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर विले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान जल मल काया मंजगे पाई ही मैला तन होय ज्ञान महार सुनाई गे पाई मन तन निर्मल होय देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बूढ़े तेहे गुर बिन अलख न लखिए पाई जब बूढ़े पद खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तय दे बैयर बोले मीठली पाई साच कहे पिर पाए फिर गए बेदी सच वसी पाई अद करही हरनाए थको आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो बीदे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईदन अदकस के लिए पाई पाव करन चक पाए खेन पल नाम हृदय बसे पाई नानक मिलन सुपाय सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या हो खनली तोती उजली ना होवई। जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे, उल्टी होवे मत बदला हो नानक मैल ना लगई। ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली कंडी, ए उत्तम पदवी ए जुगमाहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाईए, जिन को हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है, हर भगती माए समाहे। पौड़ी हर हर मेल साजन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमति हर सदा मान। हर जप जप औखद खादिया, तब रोग गवाते दुखा कान। जिन्ना साध ग्रासना विसरै, से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे, तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दब्यो, तुत्या गई विखाए। तगुर का शब्द सुनना जाग्यो, अंतर ना उपजो चाओ। श्री जलो गुणवारा, जो गुर कारना कमाए। जगत जलंदा डिठ मैं, होमे दूजे पाए। नानक गुर सरणाई उबरे, सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। सबदरते होमे गई, तो बावंती नार। तिरके पाने सदा चले, ता बनया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रामेल लई, गुर के हित प्यार। पौड़ी जिन्ना गुर गो प्याया पना, ते नर बुरियारी। हर जियो तिनका दर्शन ना करो, पापिष्ट हत्यारी। ओए कर कर फिर एक शुद्ध मन, ज्यो धरकट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी, हर मिल लो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख न लगे आए। जमण मरना मिट गया, काले का किस नाम बसाए। हर सेती मन रव रहा, सच्चे रहा समाए। नानक हो बलिहारी तिन कहो, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। तिन सबदे शुद्ध न हो गई, जे अनेक करे सीगार। फिर की सार न जाने, दूजे पाए प्यार। साक शुद्ध साक लखनी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर घर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम ते आई हर उचरा, हर लाहा लैणी। जो जपदे हर घर दिन सरात, तिन्हो कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैणी। ओ वारे अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मेल्या सैणी। श्लोक महला चौथा। हर दर्शन सो प्रीत है, हर दर्शन को मित। हर दर्शन के वस है, जो जंती कह बस जंत। हर के दास हर त्याय दे, कर प्रीतम स्यो नेहो। कृपा करके सुनो प्रभ, सब जग में वरसे मेहो। जो हर दर्शन की उस्तत है, सा हर की वडियाई। हर अपनी वडियाई पाम दी, जन का जयकार कराई। सो हर जन नाम त्याय दा, हर हर जन एक समान। जन नानक हर का दास है, हर पैज रखो भगवान। महला चौथा। नानक प्रीत लाई तिन साचे, तिस बिन रहन न जाई। सगुर मिले ता पूरा पाईए, हर रस रसन रसाई। पौड़ी रहन

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा रहाओ। बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हिरदे रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी। तय कबीर रंग राता, मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बलो मन को माटा। ताकी हो बलो मन हारी, क्यों मेटैगो शाश तुहारी। चेरी तू राम न करस पतारा, जग जीवन प्राण अदा।

आवे हो, ऐसो बेडी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस जाखेया, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

चारो राजा राम को रास जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पे हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहित आन अचरित अनकश समझना परे अपरमा।

चार पदार्थ अजतसा सिद्ध नवरद करतल ताके हर हर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विद चौ तीस अखर माही व्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाध उपात रहित फुन बड़े पग लिव लागी कहे रविदास प्रगास हृदय तर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर।

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोगश पाईए पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चित न किया कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक के सुनिए

प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए तप हे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए फिर विसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए ना को चाखे ना को खाए लोग बतीने ना पत होए ता पत रह आराखे जा सोए जै देखा तै रया समाए तुद बिन दूजी नाहीं जाए जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए हुन उठ चलना मोत के ताल क्या मोह देसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा परात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे।

साच रते अहे निस बैराग, क्यों जुग में अमृत सची बाणी, पूरे पाग हर नाम सुमाणी, सिद्ध साधक तरसे सब लोए, पूरे पाग प्राप्त होए, सबके साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए, सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे वेखै आपे सच लाए, तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही न जाए, से जन तन जिन एक नाम लिवलाए, गुरमत साची साचा विचार, आपे बगसे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ, हम मूर्ख मूर्ख मन माहे, होमे विच सवकार कमाहे, गुर प्रसादी होमे जाए, आपे बगसे लए मिलाए, बिखिया का धन बहुत अभमान, अहंकार डूबे ना पावे मान, आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत साला ही सच सोई, आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर न कोए, जिस

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव शेख खट बोले मुख आगर।

जिन जल सुखेत बढ़ायो कमल हेत बिन सुखे पवरा उन मार्ग निकस न पायो। आप मान एक स्यो मोकीना मरे न जावे सदगी संगे सदगुर सबदी चीना रहाओ। काम हित कुंतर लै फांक्यो ओ पार बस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उस ही हेत बिदारा। दे कुटंब लोभ मोयो प्राणी माया को लपटाना अतरच्यो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुखेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्रिय प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बैरानी छाडी अंग बुद्ध मोह मन बसन दे कर गढ़ा गाडी रगाओ। ना को मेरा दुश्मन रहया नाम किसके बैराई ब्रह्म सार पसायो पीतर ता गुर ते सोजी पाई। सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरगा ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सो ठीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल मैयल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा। तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन ओए आए मां आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। अब हो राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन में सदगुर पूरा पायो रहाओ। गुण निधान दिल पीतर वसया ता दुख परम पौ पागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोथा का होमे रोग मिटे कृपा ते जमते पए बिबाका। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जमते काढे इस गुर कै कुरबाणी। तनासरी महला पंजवा जिस का तान मन तान सब तिसका सोई सुड़ सुजानी तिन ही सुनिया दो सुख मेरा तौ विदनी की खटानी। जी की एक ही पैमानी आवर जदन कर रहे बहुत तेरे तेन तिल नहीं कीमत जानी रगाओ। अमृत

अखंड हो अनकबीरी समझाव हो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखाव हो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा।

प्राण पत्य तराक सगल है मरना रहाव चंदन चोरस पोग करत अनेक विखिया विकार दिग सगल है फीके एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जान तान तन आपन थाप्यो हार जप न निमुख जाप्यो अर्थ द्रव देख काश संग ना ही चलना या कोरे कर्म पला तिन ओढ़ गई संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम धान मिट्यो है अवमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे कल कलेश लो मोह मा पौजल तारे रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे ताल संग जपन संग मन निधान तारे चरण कमल नमस्कार कुन गोबिंद बिचारे ताजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाव सास सास माले हे लोग परलोक संग सगाई जद कदम होए रखवाले गुर का बचन बसे जीना।

मार दूध जैसे बाले सागर मैं भोज पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनाश्री महला पंजवा पय कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय संचाई नाम निध रिद सिद्ध हर लागर ही जन पाई संतन को आनंद सगल ही जाई गृह बहार ठाकुर भगतन का हराबरिया सर्वठाई रखाओ ताको कोई न पहुंचे नकारा जाके अंग कुसवाई जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम त्याई तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ पूर्णवंत अभमानी राजा जाने सगल राज हमारा त्यो हर जन टेक स्वामी जे को अपनी ओट समारे जैसा बित तैसा होए वर्त अपना बल नहीं हारे हरहाओ आन त्याग पै इक आसर शरण शरण कर आए संत अनुग्रह पै बन निर्मल नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा जा को हारंग लागो इस जुग में तो कई तहे सूरा आत्म जिने सगल वसता के जाका सदगुर पूरा ठाकुर गाई गे आत्म रंग।

दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। मां आनंद मंगल रूप तुमरे भजन अनूप रसाल हृदय चरण सब सगुर को नानक बंध उपाल। तनाशरी महला पंजवा अपने उद खिलावे भोजन अपने उद खिलावे सर्व सुख हो रस देव मन की नाल समावे। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कद तद तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनाशरी महला पंजवा संत के पाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोबन तन जीरा इन ऊपर लय बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पवन दे पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए भवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिरस न कतहु जात सगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो की।

गए प्रभ अपने, सुख पायो दिन रात, तनासरी महला पंजवा, पर हर ना लोभ चूड़ निंद, ए भी करत गुदारी, मृत न आस मिथ्या मीठी, ए टेक मने साधारी, सागत की आवरदा जाए बिरतारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव, काम नहीं गावारी, रहाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी, बूढ़ अंध नानक प्रकाड, साध जना संगारी, तनासरी महला पंजवा, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना, शीतल तन मन शाती, रूप रंग सुख तन जी का, पार ब्रह्म उरे जाती, रसना राम रसायन माती, रंग रंगी

साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पारतन दोख के पाप ना फेड़े जम जंदार न आवे नेड़े तृष्णा अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरणाई तन्हा श्री महला पंजवा तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निधान नानक दास पाया तन्हा श्री महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का

दीन दयाल सदा दुख भंजन तासु मना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना तनासरी महला नावा ते जोगी को जुगतना जानो लोभ मो माया ममता बोन जे कड़माए पछानो अरहाओ पर निंदा उस्त न जाके कंचन लोस मानो अर्घ सोगते रहे अतीता जोगी ताए बखानो चंचल मान दहत को तावत अचल जाए ठहरानो ओ नानक हे बिद को जो नर मुक्त ताए तुम मानो तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो जेवद मन को संसार चूक।

प्रेम भगत प्रामन पति आया पड़ पड़ फूले चोटा खावे बहुत सियाण आवे जावे नाम जपे पौ भोजन खाए गुरमुख सेव करे समाए पूज सिला।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभु सत्य सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरसों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे नार।

जो होई इंद्र लोक शिव लोक के जेबो उसे तब कर बाहर आयो क्या मांगो कुछ सिर नाही राम नाम रख मन माही रखाओ सोभा राज विभ बड़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया कहे तो कबीर अवर नहीं कामा अमरे मन थन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बेन बूढ़ते अदकाई अरहाओ बंता सुधे गृह संपद सुखदाई इनमें कुछ नागे तेरो काल अवध आई अजामल गजगन का।

तनाश्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अपतियार क्या कीजे पचनी तोर मोर मन मन जन को पूर्ण दीजे हौं बल बल जाओ रमैया कारण कारण कमन अबो।

हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छत नीका अनाज मंगो सत सीका, गऊ पैस मंगो लावेरी इक ताजन तुरी चंगेरी, करकी घीघन चंगी चन तन्ना ले वै मंगी। जय

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन कर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। तार कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावाह। मोको तार कृपा मिल गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जग जीत जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी

आपे सदगुर समुंद मथाहा आपे मथ मथ तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर घर पगदड़ी मन भाई हर घर नाम ओ महाराम आपे वरदाना वरसाह गुरमुख पूंजी नाम सहा हर घर दाद करो प्रभावे गुण नानक नाम ओ महाराम जैत श्री महला चौथा मेल सत्संगत संग गोराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा हर घर कृपा तार मधुसूदन मिल सत्संग ओ महाराम हर गुण बाणी शर्म सुनाहा हर कृपा सदगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप ओ महाराम तब तीर्थ वक्त जग पुन तुलाहा हर घर नाम ना पुजे पुजाहा हर घर अतुल तोल अदपारी गुरमत

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा, नाम जगत कोड़ सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा, थान तनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई गए फेरा। जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार, सदगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग, तजी सियान बचिंत सारी अंग छोड़े हुए त्याग। रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग, कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग, तेरे ओ सागर पापक को जो संत फेटे वड भाग, जन नांग सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान करा, त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव मया करा। रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा, नाव रूप पयो सत संग अनद पार परा, आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जाको पहे गोविंद सहाई, दुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याध न काई। रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई, एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुध पाई, दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई, तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप, अज्ञान मोह मगन महा प्राण।

राजा सगली से टका, हर नाम मन पिन्ना, तिसकी तूड़ मन उधरे, प्रभो एसो प्रसन्ना। श्लोक अनक लीला राज रस रूपं, छतर चमर तख्त आसनं, रचत मूड अज्ञान अंध, नानक सुपन मनोरथ माया, सुपने हावरंग माणिया, मिठा लगड़ा मोहो, नानक नाम विहूणिया, सुंदर माया त्रोहो पौड़ी, सुपने से तीचित मूर्ख लाया, बिस्तरे राजरस पोक जागत पखलाया, आर जा गई वेहाय संदे ताया, पूर्ण पय ना काम मोया माया, क्या वे चारा जंत जा आप पुराया। श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जिद ते प्रथमी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नांग ते प्राणी उद्यान परमण है, कौतक कोड़ तमाशे चेतन आवस नाओ, नानक कोड़ी नरक बराबर है, उजड़ सोई थाओ पौड़ी। महापयान उद्यान नगर कर मानिया, चूड़ समगरी पेख सद कर जानिया।

नाद को रंग के बेदया सनमुख उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतड़ा मन मजावे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभावे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कब हो चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोई पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामंग सर्वणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच से पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार पगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करणंग आरमणंग संजोग पूर्ण है गोपाल दस पेटंग सबल नांग सो मुहूर्त कीव न सका पाए सुख मिति हू बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त पला संयोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है तरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरणा पास नटड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी मेल लेहो दयाल तय पय दुवारिया रख लेवो दीन दयाल प्रमत बोहारिया भगत विशल तेरा बिरद हर पत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मुझ सारिया कर गए लेहो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदरण दयालंग आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओड उदरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जना सो संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाहे हर जस निरसुन श्लोक दया करणं दुखरणं उच्चरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिवत न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखंदड़ो प्रव्याप जेन पाई मेदनी नानक सो प्रवजाप पौड़ी जा प्रपय दयाल ना व्यापे माया कोड़ अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल पय शरीर जन तूरी नाया मन तन पय संतोख पूर्ण प्रापाया तरे कुटंब संग लोग कुल सवाया श्लोक गुर गोविंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण गुरदयाल समरथ गुर गुर नानक पतत उदाहरण पौ जल बिघम असगाहो गुर भोथे तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी तन तन गुरदेव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जप पए ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरुदेव नीचो उज थपे तार सिरक दुख माया कर ली ने अब दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे श्लोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नर हरे नामदान जाचंत नानक दयाल पुरख कृपा करे एक सेवी एक समला हर एक सपय अरदास ना वकर तन संचया नानक सच्ची रास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो तब कुछ आपे आप दूजा कहां के हो।
آپ کرو پردان آپ آپ لے ہو آمن جانا حکم سب نیچل تو تھے ہو نانک منگے دان کر کرپا نام دے ہو جیت سری پانی پکتاں کی ایک او انکار صدگر پرساد ناد کشو نہ جانو من مایا کے ہاتھ بکانو رکھاؤ تم کہیت ہو جگت گر سوامی ہم کہیت کل جو کے کامی ان پنچن میرو من جو بگارے ہو پل پل ہر جیتے انتر پارے ہو جد دیکھو تد کی راسی اجو نہ پتی آئے نگم پے ساکھی ہو تم نار او ماپت سوامی سیس ترن سہج پاگامی ان دوتن کھال بد کر مارے ہو بڑو نلاج اجہو نہیں ہارے ہو کہے رویداس کہاں کیسے کیجے بن رگناتھ سرن کا کی لیجے ایک او انکار تتنام کرتا پرخ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پنگ

तो अवर न कहू तानी ऐसो अमर मिलो भगतन कहो राज रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मर हर जने नहीं निकटानी निरप हो रहे ले एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको तोखा कहां व्याप जाको ओढ़ तुहारी अरहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निधान गुण तिन ही गाए क्या को कृपा तारी तो सुहिया तन उस जन्मा नानत बलिहारी टोडी महला पंजवा धार दूजा चौपदे एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद तायो रे मान दहदस तायो माया मगन स्वाद लो मोयो तिन प्रभ आव पुरायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यों एक मोतन यो मन लायो बिगसो पेख रंग कुसुंभ को पार गए जो होन जायो चरण कमल स्यों पाओ न कीनो नय सद पुरख मनायो ताकत को तावे बो पाती क्यो तेली बल्द परमायो नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीर्त गायो नाना झूठ लाए मन तोखयो न बूझो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेव थे आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मधमायो करो बेनती साध संगत हर भगत बछल सुन आयो नानक पाग परोहर पाछ राख लाज अपनायो टोडी महला पनवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया अनक सा सीगार बो करता जो मृत को ढाया रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो।

रहिए। साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लइए। सदा सदा हम शोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारक।

गोविंद आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोविंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध शिष पावे अज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सद गुरु दान देवा।

तब हर हर हर जस त्यायो, जन नानक कौ हर भेटे स्वामी, दुख होमे रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कछन दर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो सहो सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन कौ करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाए गए हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप माना

तो दर्शन की करो समाय, मैं दर मांगत पीखिया पाए रहाओ, केसर कुसुम मृग में हरणा, सर्व शरीरी चढ़ना, चंदन भगता जोत अनेही, सर्वे परमल करना, के पड़ पंडा कहे ना कोय, ऐसा भगत वर्ण में होए।

तब आयो मुख समाहो हुक्म सावर्तनी सच साहिब सच अखेल सब हरतनी सालाहो सच सब ऊपर हरतनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखे हो गनी अरहाव पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर घर बनी विच वरतै नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुरमतिया जब आने वाल वंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना चेते हर नामा खिर में बिनसे सब झूठ।

तू हो मनहार, अगम अघात ऊच अपार, जो तू सेवै तिन पौ दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुण गावे, जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, सेमर सेमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए, जिन जपया तिस को बलिहार, तिस के संग तरे संसार।

चेतना है तो चेतल है, निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहात है, फूटे कड़जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिल उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रहाओ, मात पिता सुध बंद जान हित जा सो कीना, जियो शू

जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुफन समानो तिलंग महला नामा हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कयो मान ले मेरो अरहाओ संपत रतन राश्यो आत्मनेहो लगायो काल फास जब गल परी।

तीन तेरा नाम है अदारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी देहे लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई, जे सण निसाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई, सो दम बिरथा जाए, यो तन वेची बै करी, जे को लए विकाए, नानक कम न आवई, जिद तन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला, कार सतवां, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जोग ना खिंता, जोग ना डंड, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए है, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कही है सोई रहाओ, जोग ना बाहर मड़ी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देद संतर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, सतगुर भेटे ता सहसा टूटे, धावत वरज रहाई है, निजर चरे सह तुन लाग, करगी परचा पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुखराता, कहो नानक प्रभु बिनो सुनीज, कुचर कठोर।

प्राप्त होए। सुन साजन इउं दुत्तर तरिए, मिल साधु हर नाम उचरिए रहाओ। एक बिना दूजा नहीं जाने, घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने। जो किछ करे सोई फल माने, आद अंत की कीमत जाने। कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा के हिरदय वसे मुरारी। तू ही महला पंजवा, गुर परमेसर करने हार। सगल

गुण गावत अच्युत अविनाशी, ताते काटी जम की फासी, हर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सूही महला पंजवा, अमृत बजन साध की बाणी, जो जो जप तिसकी गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी, अरहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन मह परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उधरे हर गुर शरणाई।

प्रेम शोहा करत कसाई, निर्दय जंत तिर दया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई, तर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

आओ। राग सूही महला पंजवा, कार पंजवा पड़ताल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन गोविंद एक है अवर नहीं को लेख है। संत लाग मने शाड दुबधा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया आनक कोठरिया, पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोटवरिया।

पंजवां रस मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखो पासारा अरहाओ बोबिद रूप रंग आपारा पेखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लयत बस्त निरारा वर्ण चेन नाही मुख ना मासारा कहन न जाई खेल तुआरा नान करेन संत चरनारा सूही महला पंजवा तौ में आया सरनी आया भरोसे आया कृपा आया ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरहे पठाया अरहाओ मां दुत्तर माया जैसे पवन चुहलाया सुन सुन ही डराया करो त्रमराया गृह अंध कूपाया पावक सगराया गई ओढ़ साधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

तेरे सेवक कौ पौ किछ नाही, जाम नहीं आवे नेरे रहाओ, जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सदगुर का दिलासा, नाम त्यायन सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट ले सद है, ज्ञान त्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग उर सरणी आया, रख और रख नगारे, जित तू लाभ है, ते तम लाग है, क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी, तू प्रवे अंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी, अरहाव आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या हुई है सब रेणा, जीवत्या यो मरिय, सफल जन्म जिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जे दया करे प्रवे आपे, दीन दयाल किरपाल प्रस्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला, राग सूही अष्टपदियां, महला पहला, कर पहला, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद

तुझे रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखे आप दे सो पाई है तू देखे थाप थाप दर बीनाई है देही होग खाक पावन उड़ाई है यो किथे कर औताक मैल ना पाई है दो दीवी अंध कोर कब मोहाई है गर्म से कर चोर केस रू आई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जकाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बजाई है सदा रहे नेकाम जे गुरमत पाई है आराध्य हर नाव मन वसाई है नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है सूफी महला पहला मनोना नाम सार आयन सत्याई है ज्यों राखे कृपा तार तिवे सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लगती टोनी रहो साहिब की टेक ना मोह मोहनी रहाओ जय देखो तय नाल गुर देखा लिया अंतर भार पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तू पावे तिवे रिजाए परम पौ पंजना

दातड़ी नित हिरदे रखा समाल पाव जुलाई पंध तो नैनी दर्श दिखाल श्रावणी सुनी कहानियां।

तुद अंतर हो सुख वसा, तू अंतर सा वास जियो, पाणे तखत वडाइया, पाणे भीख उदास जियो, पाणे थाल सिर सर्व है, कामर फुले आकाश जियो, पाणे भवजल लंघी है, पाणे मंझ परियास जियो, पाणे सो सो रंगला, शिवतरता गुणतास जियो, पाणे सौ पीहावला, हो आवन जान मुइयास जियो, तू सो अगम अतोलवा, हो कह कह टह पैयास जियो, क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन पूख प्यास जियो, गुरसबदी सौ पाया, सच नानक की अरदास जियो, सूही महला पंजवा गुणवंती, जो दिसे गुर सिखड़ा, तेस निव निवला गोपाए जियो, आखा बिरता जी की गुर सज्जन देह मिलाए जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत न काहू जाए जियो, इहो मरताए कूडे वसा, मैं मार्ग द्यो बताए जियो, हो आया दूर हो चल कै, मैं तक्की तौ सरणाए जियो, मैं आसा रखी चित मैं, मेरा सबो दुख गवाए जियो, इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी,

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम पुलाणी, जोबन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, तिरका सहज ना पाया सदगुर पूछ ना मार।

चौक नेरा सुन प्रमेर मैं तेरा परवस दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नस सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन कौ बल जाइए साच मिले कर आए कर आएड़े साजना ता तन करी सरसी राम हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रवि रंग रते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते तस्कर मारवसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तार गुरमत मिले प्यारे वार पाएड़ा बालड़िए आस्था मनसा पूरी राम तेरे रावेड़ी शब्द रली रब रहया न दूरी राम प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यो तिरदी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़िए माड़िए त्यो लोवा सिरता जा राम हाँ विष्णु पई देह गुणा अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानों।

साजन आए बुठे कर माही, हर गुण गावे त्रिप्त गाही, हर गुण गाए सदा त्रिप्तासी, फिर भूख न लग गए आए, दय दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए, नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए बुठे कर माही, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, राग सूही महला तीजा कार तीजा, भगत जना की हर जीव रख है, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, हमे शब्द जलाया राम, हमे शब्द जलाया मेरे घर पाया, जेदी सची बाणी सची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख बखाणी भगतां की चाल सची अत निर्मल, नाम सच्चा मन पाया, नानक भगत सोह है दर सचे, जिनी सचो सच कमाया, हर भगतां की जात पत है, भगत हर के नाम सुमाने राम, हर भगत करे विचों आप गवाव है, जिन गुण अवगुण पछाणे राम, गुण अवगुण पछाणे हर नाम खाणे, पए भगत मीठी लागी अन दिन, भगत करे दिन राती करगी मह बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल, हर जीव वेखै सदा नाले, नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम सुमाले, मनमुख भगत करे बिन सतगुर, वेण सतगुर भगत न होई राम, होमे माया रोग वे आपे, मर जन्मे दुख होई राम, मर जन्मे दुख होई दूजे पाए परज वगोई, विन गुर तत् न जानिया भगत विहूणा सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया कोड़ मध्य किने पछाणिया, हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पद खोई भगतां कै कर कारज सचा, हर गुण सदा वखाणे राम, भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे राम, काल कंटक मार समाणे हर मन पाणे, नाम दान सत पाया सदा अखुट कदे ना निखुटे, हर दिया सहज सुपाया हर जन ऊचे, सदगी ऊचे गुर के शब्द सुहाया, नानक आपे बगस मिलाए जुग जुग शोभा पाया, सूही महला तीजा शब्द सच्चे सच सोहला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम, हौमे साब केल भग काटे साज रख्या उर तारे राम, सच रख्या उर तारे दुत्तर तारे, फिर पवजल तरण ना होई, सच्चा सदगुर सच्ची बाणी, जिन सच वखा लिया सोई, साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे साब सोई, नानक साचा साहेब साची नाई, सच निस्तारा होई, साचे सदगुर साच बुझाया, पत राखे सच सोई राम, सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम

परमगत पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तननाठी पाखंड परम गवाया हौ में तीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे वेण सतगुर मगना पाया उजड़ पंथ प्रमे गावारी खिन खिन तक्के खाया आपे दया करे प्रवदाता सदगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले नानक सहज सुपाए आया लगन गणाए हिरदे तन ओ माई।

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रहे रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लए मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहे निस नाम ते आए इहो जगो दुत्तर मनमुख।

सो सदा सद जीवई बलराम जियो, तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा, जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सब बलिहारी। समलिया सच थान, मान महत सच पाया।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभु को बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरु।

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना। हर हर जप जप ये दिन राती लागे सहज त्याना। काल मल दुख दारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभु कृपा कीजे हर गुण सुनिए अबनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमाव है चरण चले प्रभ मार ग्राम। पाव सागर नाभ हर सेवा जो चढ़े तेस तार ग्राम। भवजल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे। महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बांझत फल पाए।

तो प्रभ अपना सदा ते आई है, सोवत बैसत खलिया, गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल तल मही जल सोई, जन नानक प्रभ की शरणाई, तिस बिन अवर ना कोई, मेरा कर बनया बनताल बनया, प्रभ परसे हर राया राम, मेरा मन सोया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम, गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाईया, गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजियां वाधाइया, करी नदर स्वामी सुखे गामी, हलत पलत सवारिया, बिनवंत नानक नित नाम जपिए।

आपे रखा, आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन इहो थान सुहाया। कर मंदर हटनाले सोहे, जिस च नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम आराधे, कटिए जमकी फासी राम। काटी जम फासी प्रभ अविनाशी, हर हर नाम तिहाए। सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माणे रलियां, दुख दर्द परम नासी। शब्द सुहारे सतगुर पूरे, नानक सदबल जासी। दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार ब्रह्म

बिनवंत नानक इश पुन्नी एख दर्शन जीजे राग सूही महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हों सम्मल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान औगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले काड़ काड़ वासी सर्ब निवासी नेरे गीते नेरा नानक दास सदा शरणागत।

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सूविगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए। ज्यो टेके ना बिरख की छाओ, गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सगत सिवे कर आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बरिहारी गुर अपने, जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा, सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए। इस लेंदे बिल मना हो वई, रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए, शब्द सच्चे रंग लाल कर पाए पाए सीगार बनाए। नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आप उपायन आप कीमत पाई, सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजे परमाई, मनमुख ठौर ना पाए नी फिर आवे जाई। जो तुस भावे सो थीए सब चले रजाई। श्लोक महला तीजा, सूहे वेस कामण कुलखणी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख तरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोले, मनमुख करमुखवार। जिस पूर्व होवे लिखया तिस सतगुर मिले पतार। सूहा वेस उतार तरे गल पैरे खिमा सीगार। पीगे सौरे बो शोभा पाए तिस पूज करे साब सहसार। और लाई किसे दी ना रले जिस रावे सिरजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख प्रतार। महला पहला, सूहा रंग सुपने निसी बिन तागे गलहार। सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी सपुरे आईया शार पौड़ी। यो जग आप्यो पायोन कर चोज विडान, पंच तात विच पाइयन मो चूड़ गुमान। आवे जाए पवाइये मनमुख अज्ञान, एक ना आप बुझायोन गुरमुखर ज्ञान। भगत खजाना बख्सियोन हर नाम निधान। श्लोक महला तीजा, सू विगे सूहा वेस छड़ तू ता तिर लगी प्यार। सूहे वेस तिर केने ना पायो, मनमुख दज मुई गावार। सतगुर मिले सूहा वेस गया होमे विचों मार। मन तन रत्ता लाल हुआ रसना रती गुणसार। सदा सुहागण शब्द मान पाए पाए करे सीगार। नान करमी महल पाया फिर राख्या उरतार। महला तीजा, मुंदे सूहा पर हरो लाल करो सीगार। आवन जाना विसर गुरशब्दी विचार। मुंद सुहावी सोहनी जिकर सहज पतार। नानक सात नरावीए रावे रावण हार पौड़ी। मोह कूड़ कुटंब है मनमुख मुग्ध रत्ता। होमे मेरा कर मोए केश साथ ना लिता, सिर उपर जम काल ना सुजई दूजे परमिता। फिर वेला हथ ना आवई जम काल बस किता, जेहा तुर लिख पायोन से कर्म कमेता। श्लोक महला तीजा, सतियां ए न आखियन जो मड़िया लग जलन। नानक सतियां जानियन जे बिरखे चोट मरन। महला तीजा, पीसो सतियां जानियन

आपे श्रेष्ठ उपायन आपे फुन गोई जुग चारे सब पथ की किन कीमत होई। सतगुर एक विखालिया मान तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई है करता करे सोई। श्लोक मोहल्ला दूजा जिन्ना पाओ तिन नाए पाओ मुझ पौने पवे आहा नानके उपटंतरा तित दीबान गए आह। महला दूजा तुरदे को तुरदा मिले उड़ते को उड़ता जीवते को जीवता मिले मुए को मुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सचे गुर शब्द विचारी। होमे मार मन निर्मला हर नाम उरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पै गवारी जिन की एत से ना जाननी मनमुख गुबारी। जिस बुझाए सो बुझसी सत्या क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन तो सीगार कर

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सतपुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुरप्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

तथा सबना भगता की कबीर के एक ओंकार सदगुर प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न कबहू लीना राम ना जप हो कमर मत लागे मर जे बे कहो क्या करो अपागे रखाओ दोसु करके कुटुंब जीवाया मरती बार एक सर दुख पाया।

कहे रविदास निदान दीवाने चेत सुनाही दुनिया फन खाने सूही ऊचे मंदर साल रसोई एक करी फुन रहन न होई यो तन ऐसा जैसे काश की टाटी जल गयो काश रल गयो माटी रखाओ भाई बंद कुटंब सहेरा ओए पी लागे काड़ सवेरा घर की नार उरह तन लागी ओ तो पूद पूद कर पागी कहे रविदास सबे जग लूटिया हम तो एक राम कै छूटिया राग सूही बाणी शेख फरीद जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो बाबल हो ईसो सो लोरो तैसे मन में की आरोस मुझ अवगुन सैना ही दोष तै साहेब की मैं सार न जानी जो बन खोए पाछे पछतानी रखाओ काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हो बिरहे जाली पिरहे बिहून कतह सुख पाए जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए विदन खूही मुंद अकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रसाद संग मेली जा फिर देखा ता मेरा अल्लो बेली वाट हमारी खरी उड़ीनी खन्यो तिखी बहुत पेईनी उस ऊपर गए मार्ग मेरा शेख फरीदा पंथ समार सवेरा सूही ललत बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला पार सरवर जब उछले ताब तरण दुहेला हथ लड़ाए कुसुम्बड़े जल जा सी ठोला अरहाओ एक आपी ने पातली सह केरे बोला दुद्धा थनी न आवई फिर होए न मेला

तू दयाल दया पद दाता, क्या ए जंत विचारे मुक्त बंसल तुझते होए, ऐसा आग वखाने गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए, मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त, जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले, तेन की गहन गद कही ना जाई, सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मनमुख कही है, ना उरवार न पारे, जिसनु नदर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग वेज मस्तक काले मार बिदारे, बिलावल मोहल्ला तीज अतुल क्यों तोलिया जाए, दूजा होए ता सोजी पाए, तेते दूजा नाही कोए, तेदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसे मन आए, ता को जाने दुबदा जाए रहाओ, आप सराप तसवट्टी लाए, आपे परखे आप

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर सच गुरते सोभा पाई, जगदीश सेवो में अवर ना काजा, अन दिन अंद होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेख, बौड़ ना मरे ना जम पिख, करही मैं सब कोट निधान, सतगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय देखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया, अराग बलावल महला चौथा, कार तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उद्यम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यो नडुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना, जप मन आराम नाम सना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हिरदे हर बसना रहाओ, माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना, ज्यों प्रहलाद हरनास ग्रस्यो, हर रख्यो हर सरना, कामन कमन की गत मित कहिए, हर की गे पतत पवना, ओ टोवे टोर हाथ चमचमरे, हार उतरे ओ परे ओ सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दासन्ना, बलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्द अज्ञान मती, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले।

बात होवै नहीं। अपना पला सब कोई बच सो करे जे मेरे चितना चितैनी। मन की मत ते आगो हर जन एहा पात कठैनी। आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यों पावे ते वे बोलैनी।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइए घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित्यासा हुई निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पावो साध संगत कै अंचल लाभो क्यों तरिए बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोगत रह निरारा शेर ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

न उपाया हर का मंदिर तस्मय लाल गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल जिन चाख्या तस आया साध ज्यों गूंगा मन में बिस्मात आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बिलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेव के अपनी लायो सेव बिघन न लागे जप अलख तेव धरत पुनीत पई गुण गाए दुरत गया हर नाम त्याए रखाओ सबनी ताई रविया आप आ जुगा जा कावड़ प्रताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सद गुर तूठे पार ब्रह्म प्रापे रखवाले।

ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही जरना। अरहाओ आप ही मष्ट आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख करत जन्म पुनमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, आगन सागर बूढ़त संसारा। नानक बां पकर सतगुर निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तान मन तान अर्पो सब अपना, कामन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रामंगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन। रखाओ आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बुसुरत नहीं चतराई, ता मिल गए जान लय मिलाई, नयन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सबल सो आया। बिलावल महला पंजवा, माद पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे। रखाओ तिखा भूख बो तप्त व्यापया, शीतल पय हर हर जस जापया, कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वड़ भागी पाईए, मिल साधु हर नाम।

तई रसना मन तन निर्मल होई है, गुर का जब जपना रखाओ। हार त्यागत त्रापया मान रस लय हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बेगसना। शीतल सांत संतोख होए था बूझी तृष्णा, दैध तावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारी राख्या पय प्रांपसना, नाम निधान नानक सुखी पेख साध दर्शना। बलावल मुखन लापनवा पानी पखा पीस दास कह, तब होवे निहाल। राज मिलक सिकदारिया अग्नि मय जाल, संत जना का शोरा ते चरणी लाग। माया तारी छद्रपात तिन छोड़ो त्याग रखाओ। संतन का दाना रूखा तो सर्वनिधान, गृह सागत क्षति प्रकार ते बिहु समान। भगत जना का लूगरा ओड नग्न न होई, सागत सिर पाओ रेशमी पैरत पद खोई। सागत स्यो मुख जोरे है अद भी चों टूटे, हर जन की सेवा जो करे एक पूते छूटे। साग किश तुम ही ते हुआ आप बंत बनाई, दर्शन पीड़त साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा श्रमनी सुनो, हर हर हरे ठाकुर जस गावो। संत चरण कर शीश धर हर नाम ते आवो।

अवसर दुलभाया, अंतर्यामी आप प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया, मद फूलो मानुख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रभ है राया, बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे आनक शिदर मन में टके, निर्मल दृष्टि हे क्यों बिस्तरे प्रा मने ते, जिसके गुण एहे प्राप तज रचे जे आन स्यो, सो रलिगे खे हे रघाव, सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेहे, जिन अनक एक बहु रंग किए है हो सी एहे, कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे, ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेहे, दास दास को दासरा नानक कर लेहे, बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुणतास, जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहार, करणहार जो कर रहा साई वड्याई, गुर पूरे उपदेसे आ सुख खसम रजाई, चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, न बिरसे न छोड़ जाए,

रोग रगाव औगध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापे हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उत्तरे शुद्ध होए साधु शरणाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवा पय ते उपजे भगत प्रभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिस फिटिया ताके सुख परवेश।

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चत निवत रहे गुरु शब्द अखूट।

को नास चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर

मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेयन अपनी कल तारी मन बांझत फल दितेयन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन सरवनी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

लीनो पर अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरवान गुर नानक बोले दरगह परवान राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दो पदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहा बिस्मन बिस्म पाए जो पेख्यो तैन न जाए वडियाई मगन पै ऊहां संग माते ओत पोत लवटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अहं बुद्ध नहीं पूरा ऊचन ऊंचा बीच न खींचा।

गत नहीं पाई। क्या कथिए किस कथन ना जाई, जय जय देखा तय रहा समाई रखाओ। जय महा भयान दुख जम सुनिए, तय मेरे प्रभु तू है सगाई। शरण परे उहर चरण गए प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आगम रूप अवनाशी करता, पातत पवित एक निमख जपाइए। आचरज सुनियो प्रात फेट ले, संत चरण चरण मन लाइये। कित विधिये कित संजम पाइये, कौ सुरजन के जुगती त्याइये रखाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाइये। नानक सरन सरन सुख सागर, मुए टेक तेरो एक नाइये। बलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद आर सगल जंजारो। अवर काज ते छूट परी रखाओ, दुख सहज आर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी। ऐसो हरस बरन सको, गुर पूरे मेरी उल्ट तरी। पेख्यो मून

ऊपर पावे, पेखत सुनत सदा संग हरे रखाओ। काज भयाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत, साजन त्याग करे होमन तौरा अनहोमन मीठा। दिखिया मैं लपटाए जरे अंध कूप मैं परे हो प्राणी, परम गुबार मुह बंद परे कहो नानक प्रभुत दयारा। गुर पीटै काढ़े वहां फरे बिलावल महला पंजवा, मन तरसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे।

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। बिलावल मोहल्ला पंजवां। सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कछ दुख ना व्यापै, आगे दरगे पूर्ण काम रहाओ, आप त्याग परिये ने सरणी, गुरते पाएगे इहो निदान, जन्म मरण की कटिए फांसी, ताची दरगे का निशान, जो तुम करो सोई फल मानो, मन ते छूटे सगल गुमान, कहो नानक ताकी सरणाई, जा का किया सगल जहान। बिलावल मोहल्ला पंजवा। मान तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर वकार नित, तिस रसना का मोल किश नाही रहाओ, कोल समूह उदरे खिन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अंध सेती बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, और सागर पार पराही, संत सेव

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इहो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव।

मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

या गुण तेरे सार संहारी सास सास प्रभ तुम्हें चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल मोहला पंजवा तन तन जोबन चलत गया आराम नाम का भजन ना कीनो करत विकार निसपोर भया रहाओ अंग प्रकार भोजन नित खाते।

मूला नसो प्रीत बनी अरहाओ तोरी न टूटे शोरी न छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रवो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत दुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारे हो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे हर की जया। बेलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे। औद विहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमन जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए। जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अभमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। महामुत अजान अज्ञानी रखे थार दए। कहो नानक गुरपुरा फेट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी उपजो चाओ मिलन प्रीतम रहे ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि अंधले टेक निर थन थन पायो। प्रव नानक अनक गुनी राग बिलावल महला पंजवां कर तेरवा पड़ताल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवे हावे हार कजर बस्तर अवरन कीने। ओडीनी ओडीनी ओडीनी तब कर आवे री रखाओ। शरण सुहागन चरण

भगत बिना सहसा नहीं चूके, गुर ए पेद बतावे रगाव, कहां पयो तीर्थ व्रत किए, आराम सर नहीं आवे, जोग जग निफलते मानो, जो प्रजस्त सिरावे।

गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे, गए ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ, हर गुण दे गोपाल, सर्व कड़ प्रतपाल, मन प्री दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस, एक निमख रहन ना जाए, वड़भाग नानक पाए, प्राभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर, जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत, जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास, जो तरन परत परान, जो लोभिये तन दान, जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग, जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत, जो दीप पतन पतंग, जो चोर हिरत निसंग, मैं गले कामे बंद, जो ग्रस्त बखई तंद, जो जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए, कुरंक न देने हो, चात्रक चाहत में हो, जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग, रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान, गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले, कुल समूह करत उधार, संसार उतरस पार, हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे, हर पैज रखे मुरार, हर नानक सरण

जे हर त्याग अवर की आस कीजे तहर नेफल सब काल गवासा मेरे मान हर सेवे सुख दाता स्वामी जित सेवे सा पुख लखासा मेरे मान हर ऊपर कीजे पर।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे साध जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन्म बसे कर कृपा जन लिये छिड़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रसार बिन भगती सब होए खुवार गोंड मोहल्ला पंजवां काल कलेस मिटे हर नाए दुख

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोह काम

अहंकारी, जन पर माने निंदक वेकारी, गुर कै सिख सदगुरु ते आया, जन उबरे निंदक नरक पाया, तुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरतै घर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अवमानी की जड़ सर पर जाए, नी तरिया सदगुर तर तेरी, करके पारा खो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जा के सिमरन पैज सवारी, राग गोंड बाणी भगतां की, कबीर जी तार पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, संत मिले के सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रब रही है रखाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले

खुदे जाहे वाके अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख तन सुहागन महा पवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठांडी दरबार तरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर शनक शन हरी जाओ लग प्राण तऊ लग संगे नहे तचली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रै लिया दस अट पुराण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे बड़े पूबत राजे हैं सिद्धे सुहागन

बूंद में सागर कवन बुझे बिद जाने, ओत खुद चलते आप कर चीने आपे तत् पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन में रहन रहन में दिनियर उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने गुर बिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ पंच मिले गुर पाई, नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई।

प्रभावे आहिर भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रखाओ तुन वाजे अनखद कोरा मन माने हर समोरा और पूरे सच समाया और आद पुरख हर पाया अवनाद वेद गुरबाणी मन राता सारग पानी ते तीर्थ वर्त तब सारे गुर मिलिया हर निस्तारे ते आप गया पो पागा और चरणी सेवक लागा और सतगुर परम चुकाया हो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला शादन भोजन मांगत पागे खुदया दुष्ट जले दुख आगे गुरमत नहीं लीनी दुरमत पद खोई गुरमत भगत पावे जन कोई जोगी जुगत सहज कर वस एक दृढ़ एको कर देखिया भीखिया पाए सब तृप्ता सह रखाओ पंच बैल गडिया दे तारी